0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी का फ्रॉक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बस ओवेंटुरी नी लिली लिली ओवेंटुरी नी पापेल ओवेंटुरी नी ना कंडीशन ओवेंटुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हाँ ना इन ओवेंटुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम हम से में इंडिविडुअल नियन इधर पॉइस हमने मिसाजन माका तंबस ओवेंटुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसेदारे ने हने सनी आन उसी तो थ्योरिया बारा की रा उसी तरह ना यीशु क्रिस्टु निहाते थे हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवन हीरा ओला हाडोमी उन्हें मालूक सीरा तंबने मखाउ दिहन से हाउ ही ना मुरारा हाउ दिया हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवन हीरा ओला हाडोमी सोसेदारे तंबे इंटरेसे उसी इतने हमुतुक ने इंटरेसे बस सोसेदारे ने मक इम्पोर्टेंट है अतुलोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जोवेंटुरी तेंगे सही अजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया नु जोवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला दिहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुझे आकर आते थे बस ओवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबाइन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी आरे हुरी कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी आरे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबाइन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमैच्योरिटी आरे कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी आरे मका साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस दिहन साला इदन मक इंपोर्टेंट लावेले रियान निया या कार्गो निया एलिट Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah mas jadi ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa Venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. La bela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah usik kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filofali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk Juventus sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba Juventus sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk Juventus hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare jane be mako klase ba susidare jane be mak laho klase tamba ita kule kon basunta ansuntul lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan mai be ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare laho klase nu ita tengki unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

0: ठीक समय तम बने दे बाहर जो माता से रित थीं फल नो नियो बोले अफेर का जो रहता साउदी बाकुम्ला से नहीं ना पूजा बत्ती ने पिसन
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.